0: रोने
1: एक्शन ले बबुआ तू धाप तू धाप जेतुका हाँ बबुआ हाँ बबुआ ऐसा नहीं क्या ऐसा नहीं ना वो नानी तेरे नानी तेरे को नानी तेरे हाँ वो आते देखो एक दूरी है आगाडी मुझे देख आगाडी मुझे आस आस बेसी में कोची ना है कैसे कोची लेकिन पक्का नहीं जा रहा हूँ
2: कंधे रहा आगाडी में उधर बेटा देख कहाँ है
1: Oh, my God.

0: हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 MHz गर्जन छ सधैँ बाघ छैन।
1: इंग्लिश स्कूल के बताएं, कल हम कूलर के मोटर की बाइंडिंग करा के आए, पूरा नहीं है पर हमारे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। फुल इंग्लिश स्कूल के बताएं, आई लव यू।